दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं चल सफेद जी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं प्रेम डायरेक्टर विनेश। ये हमारा 697 जो शो है विद प्लेन से मीडिया और फ्रीक्वेंसी 96.9। अगर आप गाड़ी में हो तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस, बट प्लीज बी केयरफुल ऑन द रोड। जी हाँ, सभी का हम स्वागत करते हैं इस सुहानी शाम में। क्रश थोड़ी ठंड हो चुकी है बाहर, लेकिन दिन में वेदर काफी बढ़िया था। और ये जो आज हमारा प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम को डेडिकेट करेंगे आशा भोसले जी की याद में। और हमारा जो भी टैलेंट शो भी होता जलसा टैलेंट सीरीज सीजन 5 एपिसोड 3 भी काफी बढ़िया गया थर्सडे को, और उसमें जो गायिका थे यानी कि आर्टिस्ट थे अंजलि जी और निशिभात ने बहुत खूबसूरती से जो गीत अदा किया था, और साथ साथ में कुछ ड्यूट्स भी थे जिसमें अनुराग छा रहे थे। और साथ साथ में हम डेनी और टी नंदन जी को भी याद करेंगे जिन्होंने भी एक संगीत उसमें प्रदान किया था। तो चलो तो बढ़िया से गया, लेकिन आज के लिए ये सफ़र में फिर हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ गीत सुनाने के लिए जो आशा ने गाए थे। और आशा के विषय में बात हम करना चाहेंगे, और इसके लिए हमारे जो स्टूडियो में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं चेतना जी और साथ साथ में अनुराग। अनुराग शायद आज थोड़ा कम बात करेंगे, उसकी जो तबीयत उतनी ठीक तो नहीं है, शायद उसने कुछ ज़्यादा ही गाना गा लिया था थर्सडे को। लेकिन चेतना जी ही इज प्रिपेयर, थैंक यू फॉर कमिंग। हम इनसे भी सुनेंगे और हम आशा जी के विषय में बात करेंगे, उसके जो आई थिंक सफ़र है, हम ज़्यादा करके फोकस करेंगे ऑन हर करियर, लाइक जो सॉन्ग्स उसने गाया है और काफ़ी खूबसूरती के साथ में उसने काफ़ी हम कहेंगे वर्सेटाइल जो सिंगर थी, और हर तरह के हम कहेंगे गाना उसने गाए, बट उसके जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चेतना जी आज देने वाली है। और भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, और एक गेस्ट हमारे साथ में जुड़ने वाली है जो अंजलि।

और हम आशा करते हैं कि अगर वो हमें गाड़ी में सुन रही है तो आप पहुंचिए, फिर हम आपसे भी गाना गवाएंगे। और एक चीज़ और बतला दें कि अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हो, जाना चाहते हो, तो जी हाँ, एक जो प्रोग्राम आज हो रहा है इन द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ सिद्धगुरु सिद्धेश्वर राम ऋषि गुरुदेव, उसका जो प्रोग्राम है यहाँ रोल्स्टन में, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। रोल्स्टन कम्युनिटी सेंटर अभी भी समय है, आई थिंक वो लोग 9 PM तक वहाँ पे चलेगा। तो अगर इफ़ यू डू वांट टू गो देयर, यू कैन। और साथ साथ में हमारे पास और भी जो समाचार है, हम आपके साथ में शेयर करते चलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सुपर सीरीज का जो गेम अभी चल रहा है लाइव फिजियन रुआ और हाइलैंडर्स के बीच में, आई नो हमारे साथ में शिवनील भी शामिल है, ऑब्वियसली फिजी और रग्बी में उसका जो दिलचस्प है। तो शिवनील, अभी अनफॉर्चुनेटली हाइलैंडर्स अब जीतना शुरू कर दिए हैं, तो 14-12 अभी स्कोर है। तो चलो हम एक गीत आपको सुनाते हैं, फिर हम जो ये इंटरव्यू आप कह सकते हैं, हाँ बातचीत हम शुरू करेंगे, जब हम चेतना जी और अनुराग से बात करेंगे इस गीत के बाद में।

0: जी हाँ दोस्तों साथियों, आशा करते हैं कि जो गीत अभी आप सुन रहे थे, जो आशा भोसले ने बहुत खूबसूरती के साथ में अदा किया था 1957 की बातें, और बहुत ही जो बेहतरीन गीत था, जो आज भी आई थिंक अगर आप इस गीत को सुनेंगे तो वो जो फ्रेशनेस है, एनर्जी अभी भी आपको जो मिलेगी। तो चलो, हमारे जो गेस्ट है बिल्कुल तैयार आज बात करने के लिए, तो चलो हम शुरू करते हैं चेतना जी से। तो आप बताइए चेतना जी, अभी आप कैसे महसूस कर रहे हो?
1: परफेक्ट, बहुत खुश टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके, हमेशा की तरह

0: फीलिंग ब्लेस्ड टू बी एबल टू स्पीक अबाउट आशा भोंसले जी.
1: थैंक यू सो मच चेतना जी. और अंजलि जी आप बताइए, आप आपका क्या मिजाज है?
2: आशा भोसले जी के बारे में बात करना ही अपने आप में एक बहुत सुकून वाली बात है, तो मैं ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि आज मुझे मौका मिला उनके बारे में रेडियो पे बात करने का. सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी विनेश जी.
1: जी हाँ. और अनुराग जी, हम आपसे कितना बात कर सकते हैं आज?
3: देखिए, जितनी क्षमता में बात करूँगा, सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ विनेश जी, कि आपने आशा जी के बारे में प्रोग्राम होस्ट किया है और उसमें हमें इनवाइट किया है. वी आर रियली ग्रेटफुल. आशा जी के लिए कुछ बोलना यानी सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी, तो इसमें हमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़े. डेफिनेटली वी आर लकी एंड फील ब्लेस्ड. सो जलसा फीजी रेडियो के श्रोताओं को सबसे पहले हमारा प्यार भरा नमस्कार. और हमने पीछे 12 तारीख को इसी महीने, अब तो पिछले महीने 12 तारीख को आशा जी को खो दिया, तो हमारा हमारे इंडियन म्यूजिक का, बॉलीवुड का एक सितारा, हमने जो उस लेजेंडरी एरा का जो आखिरी सितारा अब तक था, हमने वो भी खो दिया. तो वो हमेशा हमारी सांसों में बसी रहेंगी. आशा जी के बारे में अभी तो हम बात वही है कि उनके बारे में बोलना शुरू भी नहीं किया है, और हमें ये लग रहा है कि क्या हम जस्टिस भी कर पाएंगे उनके बारे में कुछ बोलने के बारे में. आई रियली डू नॉट नो. हमारी तरफ से हम जो भी कुछ उनके बारे में हम शेयर कर पाए, हमारा एक छोटा सा ट्रिब्यूट होगा. तो विनेश जी के साथ हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं.
1: जी हाँ, बिल्कुल. तो हम क्या करते हैं कि हम और क्या गीत आपको सुनाएंगे, और जैसे गीत जो खत्म होगा, हम नेक्स्ट जब अपने जो गेस्ट अंजलि है, चेतना है, अनुराग से हम जब बात करना शुरू करें, दिस व्हेन वी आर गोइंग टू स्विच लाइव, हम फेसबुक लाइव भी कर देंगे, ताकि जो लोग हमें वीडियो पे देखना चाहे, या तो फिर अंजलि और चेतना है, अनुराग है, यू कैन गेट एंगेज्ड विद अस, तो हम फेसबुक लाइव करने वाले हैं. तो आई विल प्ले दिस सॉन्ग, आप सुनते रहिए, तब तक हम तैयार होते हैं लाइव वीडियो के लिए.

0: जी हाँ दोस्तों, साथियों आपका स्वागत करते हैं पुनः जलसा फिजी रेडियो के लाइव प्रोग्राम में। जो लोग हम भी हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं ऑन जलसा फिजी रेडियो लाइव, आपको भी हम स्वागत करते हैं। और जो लोग हमारे साथ में अभी तक फ्रीक्वेंसी पे जुड़े हुए थे तो हम उनसे वही बात कर रहे थे कि ये जो प्रोग्राम है हम डेडिकेट कर रहे हैं आशा भोसले जी की याद में। और हमारे साथ में जो गेस्ट है जुड़ चुके हैं, अंजलि जी है, चेतना जी है और अनुराग, सभी रोल्स्टन के निवासी है, सभी लोग यहाँ पे आ पहुँचे हैं और ये लोग आज हमें सपोर्ट करने वाले हैं इस जो स्टूडियो में। और जी हाँ, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि अभी जो हमारा जो टैलेंट सीरीज हुआ है उसके विषय में बात करें तो हम आपसे आपका वीज भी लेंगे। लेकिन जो लोग अभी हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं अगर उन्हें जाना है तो आपको प्रोग्राम भी बता देते हैं कि रोल्स्टन में भी प्रोग्राम चल रहा है। सिद्धगुरु सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव का जो प्रोग्राम अभी भी है चल रहा है, गोइंग ऑन एट द मोमेंट रोल्स्टन में, रोल्स्टन कम्युनिटी सेंटर। अगर आपको जाना तो अभी भी आप जा सकते हो, तो अभी भी आपके पास मौका है जाने के लिए। और जो लोग रग्बी में इंटरेस्टेड है तो वंस अगेन शिवनील जी जो हमारे जो कैमरा के पीछे है, तो गुड न्यूज़ फॉर यू बिकॉज फिजी एंड ध्रुआ इज नाउ विनिंग 24 और हाइलैंडर्स 14, सो लेट्स होप ध्रुआ कैन विन दिस वन। अ बिट ऑफ बैड लक टू क्रुसेडर्स यस्टरडे, वी लॉस्ट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो चलो हम इस प्रोग्राम को आगे लेते हैं। और अभी हम फ्रीक्वेंसी पे बात ही कर रहे थे अनुराग जी से, उसकी तबीयत थोड़ा उतना ठीक आज नहीं है। चेतना जी शी इज लुकिंग फ्रेश टुडे, तो फुली प्रिपेयर्ड आई हुई है। और फिर हमारे साथ अंजलि है जो कुछ जो आशा भोसले के कुछ जो गीत है गुनगुनाएगी। और इससे पहले हम अपने जो गेस्ट से बात करें, हम शुक्रिया करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स को जिसके वजह से हम ये जो प्रोग्राम कर पा रहे हैं, विच इज़ जनरेशन होम्स, विवेक श्रीवास्तव है, संदीप है, सेरा, सभी को याद करना चाहेंगे। लाइफ स्टाइल सोल्यूशन रिचर्ड सेवक, आपको याद करना चाहेंगे। वरुण जी फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप अकाउंटिंग, रोहित सजय देवा, बेटर चॉइस होम लोन्स, एन जेड फ्लेम्स के हमारे जो दोस्त हैं नीर जी और फिन फेया, गो वाइज ड्राइविंग, आपको भी हम याद करना चाहेंगे। टी नंजन जी, अंशुल गुप्ता, क्लाइन रियल स्टेट और मेजेस्टिक स्टेज, मोनिल जी आपको भी याद करना चाहेंगे, और डेनी जी फ्रॉम ऑन द गो ईस्ट गेट, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस ताकि हम ये जो कम्युनिटी रेडियो इसी तरह हम कंटिन्यू कर सके। तो अंजलि जी, आप यू आर प्रीटी एक्साइटेड, होपफुली आपका जो रात्रि यानी कि जो शो अच्छी तरह बीता।
1: बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी विनेश जी, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत हम्बल्ड एंड ऑनर्ड फील किया इस शो का हिस्सा बन के।
0: थैंक यू फॉर योर सपोर्ट अंजलि, बिकॉज जब भी हम आपको याद करते हैं आप बिल्कुल तैयार होते हो और आप हर वक्त व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक यू आर ऑलवेज एक्साइटेड। ऐसा और अनुराग का जो योगदान रहता है एंड ही इज देयर टू इंस्टिल द एनर्जी, बिकॉज मुझे तो गीत वगैरह गाना वगैरह आता नहीं है, सो आई एम बेसिकली रिलाइंग ऑन हिम टू मेक श्योर कि जो ट्रैक वगैरह सही जा रहा है। एंड ऑफकोर्स साहिल इज डूइंग अ गुड जॉब, पूरे टीम है, सभी लोग अच्छी तरह कर रहे हैं, सो थैंक्स, सच अ ग्रेट टीम, और उन्हीं की वजह से जो सक्सेसफुली हमने जो एपिसोड 3 किया है। और जो लोग सुन रहे हैं तो आपको जल्दी से बता दें कि जो सीरीज जो सीजन एपिसोड 4 रहेगा वो मई लास्ट थर्सडे रहेगा, और उसके बाद वाला जून का लास्ट थर्सडे रहेगा। सो तो 2 महीने ऑलरेडी बुक कर दिया और हमारे पास आर्टिस्ट है, बट अगर आप भी शामिल होना चाहते हो देन यू डू कॉन्टेक्ट अस। मैं वाला तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जून में एक स्पाइस है, अगर मोर इंटरेस्ट आएगा देन आई विल ट्राई टू बुक इन जुलाई, बट इफ यू वांट टू टेक पार्ट डू कॉन्टेक्ट अस। और साथ साथ में अगर कोई आना चाहता है जस्ट एज एन ऑडियंस, किसी तरह का रुकावट नहीं, जस्ट कॉन्टेक्ट अस एंड फील फ्री टू कम इन, मैं एड्रेस वगैरह दे दूंगा बिकॉज वी हैव इनफ सीटिंग स्पेस, तो उसका कुछ दिक्कत नहीं है। शो सिर्फ 1 आवर का रहेगा, 6:45 to 7:45 PM, सो प्लीज डू कम इन टाइम, बिकॉज अदरवाइज अगर देर में आओगे तो ऑलरेडी हाफ शो शायद खत्म हो चुका होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आशा भोसले जी के विषय में बात करना चाहेंगे। इस बार जो कुछ अभी तक मैं रिसर्च कर रहा था उससे वही मुझे पता चला कि शी स्टार्टेड सिंगिंग एट अ वेरी यंग एज, और उसको भी काफ़ी जो अमन सभी का लाइफ में ऊपर नीचे रहता है, शी डिड गो थ्रू आउन स्ट्रगल्स। और मज़े की बात ये थी, जब एक्चुअली मुझे तो मालूम ही नहीं था कि शुरुआत में जब वो स्टूडियो पहुंचे थे एंड दे वर ट्राइंग टू सिंग अ सॉन्ग, और इट वाज किशोर कुमार एंड आशा जी, और उनको डिक्लाइन कर दिया गया था बिकॉज ये बोल के उसकी आवाज़ ख़राब है। एंड देन हू न्यू कि बाद में उन्हीं की आवाज़ सबकी जो दिल की धड़कन बन जाएंगी। वुड यू एग्री अनुराग जी?
2: बिल्कुल जी बिल्कुल। सबसे पहले जलसा फिजी रेडियो के श्रोताओं को और दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर आशा जी के बारे में हमने ये शो रखा है उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए, तो हमारी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो हम ज़रूर अपने आप को लकी समझेंगे, और मैं समझता हूँ कि उनको आशा जी को

0: कुछ उनके बारे में कुछ आपसे शेयर करना, इसका मतलब है सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपनी तरफ से जो भी ऊपर पड़ा देंगे। डेफिनेटली ये शो एक बहुत एक छोटा सा जरिया है जिसमें पता नहीं हम कितनी जस्टिस कर पाए, बट हाँ आप सबके लिए हम लोग कुछ लेकर आए हैं छोटा मोटा। तो सबसे पहले हम जैसा कि विनेश जी कह रहे थे, ये तो इनकाउंटर होते रहता है, बट आशा जी के बारे में बहुत मतलब ज़्यादातर तो बातें सभी जानते हैं, बट डेफिनेटली हम हमारी तरफ से यही जोड़ेंगे कि इंडिया में मेरा ख्याल है 83 ईयर्स लॉन्ग उनका करियर रहा है, जैसे कि इन द सेंस उनकी एज इतनी है, उन्होंने इतना इतना अर्ली एज में स्टार्ट किया था कि शायद जो हमारी भारत की यू नो हम जिनको नाइटिंगेल बोलते हैं और गॉडेस ऑफ सिंगिंग लता मंगेशकर जी हैं, वो डेफिनेटली मंगेशकर फैमिली के दोनों वो अपने अपने सितारे हैं। दीनानाथ जी की एक्चुअली आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन लता जी वॉज द एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट वॉज इस हृदयनाथ जी जो उनके ब्रदर जो अभी बचे उनके हैं। तो आशा जी भी बोल रहा तो ज्वेल्स है, लेकिन पांचों में आशा जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा रहा है। उन्होंने मराठी पार्श्व गायिका से शुरू किया और हिंदी में भी आया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ करियर स्पैन उनका सबसे लंबा रहा है, लता जी से भी थोड़ा सा ज़्यादा। बट हाँ आशा जी हमें ये कहना चाहिए पद्म विभूषण आशा जी, बिकॉज ये वाली जब पद्म वाली विभूषण जब हमें भारत सरकार वो करती है तो हमें उनको उसी से संबोधित करना चाहिए। तो पद्म विभूषण आशा जी को अपने लाइफ स्पैन में 9 फिल्मफेयर अवार्ड्स मिले हैं और प्लस 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले हैं, और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का महा अवार्ड है वो भी उन्हें दिया गया है। सो ये अवार्ड्स एक यू नो जब हम अपने फिल्मी करियर में होते हैं और इस तरह के अवार्ड जब हमें मिलते हैं तो ये एक छोटा सा नजराना तरीके का होता है जो हमें थोड़ा सा खुशी देता है। बट हाँ जितने गाने आशा जी ने गाए हैं उन्होंने शायद इंडियन लैंग्वेजेस की सारी जितनी भी वर्णमालाएं हैं और जितने भी लैंग्वेजेस हैं सभी लैंग्वेजेस में उन्होंने गाने गाए हैं, सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। उनका वर्ल्ड गिनीज बुक में भी नाम है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स उन्होंने गाया है। मैं अपनी जर्नी जरूर शेयर करता रहूँगा जितना मेरे से बन पड़ेगा, लेकिन मैं आगे माइक पास ऑन करना चाहूँगा हमारे साथियों के पास में भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपना ज़रूर शेयर करेंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल। और चेतना जी, अनुराग, मैंने सवाल पे आपसे पहले पूछा नहीं पूछा, बट आप मेरी तरह गीत गाते हो या अनुराग और अंजलि की तरह गीत गाते हो?
2: मैं बिल्कुल आप ही के गैंग में हूँ।
1: मेरे गैंग में, ओके।
2: लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहती हूँ अंजलि और अनुराग कर क्या सकते हैं आपके और मेरे बिना।
1: जी हाँ, हमें तो जी हाँ, ये बात तो सही है, भी सुनने वाला भी कोई चाहिए ना,
2: और ऑर्गेनाइज करने वाला भी तो कोई चाहिए।
1: जी हाँ,
2: आपका लगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आई वुड से कि आप जो नए टैलेंट और नए लोगों को इतना एनकरेज करते हैं और उनको प्लेटफॉर्म देते हैं कि आके वो अपना टैलेंट दिखा सकें और इंस्पायर कर सकें और लोगों को, विच इज अमेजिंग। उसके बिना घर में गाना तो आई एम श्योर सभी गाना चाहते हैं, but we know that acknowledgement is what matters for an artist.
1: जी हाँ, और मैं काफी दिनों से एक स्पाइस अभी भी हमारे टीम में बचा जो मैं ढूंढ रहा हूँ, शायद आप ट्राई करना चाहोगे?
2: मैं पक्का ट्राई कर सकती हूँ, बट आप डिसाइड करो कि ये लास्ट शो तो नहीं करना चाहते आप।
1: मुझे क्रिटिक चाहिए टीम में। जी हाँ, चलो जब आशा भोसले जी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप भी बचपन से उसके साथ गीत सुनते आए होंगे।
2: जी, नीडलेस टू मेंशन कि आशा भोसले जी का गाना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ऑल्दो शी स्टार्टेड हर करियर एज लता मंगेशकर जीज यंगर सिस्टर, बट उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और उनकी जर्नी हैज बीन वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आई फील नॉट इंटेंडिंग टू कंपेयर विद एनीबॉडी एल्स, लेकिन जिस तरह जिन मुश्किलों का सामना करते हुए ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश कलाकार घर में होते हुए इस मुकाम तक पहुंच पाना बहुत बड़ी बात है। और हम जान सकते हैं कि उनका पहला गाना 1948 में उन्होंने गाया है, बट शी डजंट हैव समथिंग वेयर यू कैन से एज लास्ट। काफी एंड टुवर्ड्स हर लाइफ तक वो म्यूजिक को कंट्रीब्यूट करती है, रही हैं और सभी को उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। कितने ही कलाकारों के नाम हम ले सकते हैं इंडस्ट्री में जो सिर्फ आशा भोसले जी की वजह से ही बने हैं टू एक्चुअली बी ऑन टॉप। आई वुड जो मेरे दिमाग में आती हैं वो हेलन जी हैं, कि आशा भोसले जी के गानों ने हेलन जी को उस मुकाम पर पहुंचाया जो शायद उससे पहले वॉज नॉट हैपनिंग फॉर हर। सो उन्होंने बहुत लोगों के लिए, she has been, you know, that step

0: stepping stone or that inspiration?
1: Yeah, I would definitely agree with you because hum jo actual practical zindagi mein jab rehte hain, we do certain things, lekin society may not accept it, ya to fir aap kuch aisa kar rahe ho jo log kahenge, you know, why are you doing that, ya to fir aap successful ho gaye ya nahi ho gaye, and then aapko second third thoughts dena padta. But look at Asha ji, despite all those obstacles, she still became the legendary artist or superstar ban chuki hai. To isi tarah zindagi mein, I think if you have if you have determination, you will be successful. So that's an inspiring inspiration that you can take away from her life. Agar aap study karoge to I hope that you can take that from her. Aur isliye main kahunga ki aapka kuch bhi ideas ho, just move on, aap try karo, koshish karo, and then don't worry too much about what people say. Keep on moving ahead. So Anjali ji, aap to gaika ho, you are a singer, and aap jo geet bhi gaate ho, kafi personally gaate ho, aur aapka jo selection of songs thoda kuch alag hi hota hai, because I know you come up with a different kind of variations. Aur Asha ji ke agar vishay mein agar dekha jaye, then she wasn't those kind of singers ki straight away usko wo gana mil gaya jo main heroine ya jisko gana tha. Songs are more like khalnaika ke upar hota tha, ya to fir kebrat like abhi hum kya kehte hai usko, item song. तो अभी तो काफी इज्जत से हम लेते हैं नाम आइटम सॉन्ग, लेकिन उस जमाने की जब बात करते हैं, आई डोंट नो कितना रिस्पेक्ट मिलता होगा जो खलनायिका गीत होता था, या तो फिर कैबरेट जो सॉन्ग्स होते थे. आप बताइए, आपका क्या विचार है?
0: मैं अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ आशा जी के बारे में. तो आशा जी 10 साल की थी जब उन्होंने अपना पहला मराठी सॉन्ग रिकॉर्ड किया था. आशा जी ने एक इंटरव्यू में, जो प्रणव गोस्वामी जी ने उनका इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि काफ़ी मुश्किल था उनका सफ़र, क्योंकि लता जी ऑलरेडी थी, वो एस्टैब्लिश्ड सिंगर थी, तो उनके साथ कम्पीट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता था. तो आशा जी ने डिसाइड किया कि अगर मैं दीदी की तरह ही गाऊंगी, क्योंकि आवाज़ें बहुत सिमिलर थी दोनों की, तो वो अपनी जगह नहीं बना पाएंगी. आशा जी ने बताया था इंटरव्यू में कि वो इंग्लिश सॉन्ग्स और इंग्लिश मूवीज़ काफ़ी सुना करती थी अपने दौर में, तो वो काफ़ी इंस्पायर होती थी जिस तरह से इंग्लिश गाने गाए जाते थे, क्योंकि वो तरीका हिंदी म्यूज़िक का नहीं था. वो बताती हैं कि हिंदी म्यूज़िक में काफ़ी फ्लैट वॉइस में गाना गाते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती थी उस टाइम पे. तो इंग्लिश म्यूज़िक से उन्होंने वो इंस्पिरेशन ली कि मैं अपनी आवाज़ चेंज करूँगी, मुझे अपनी एक अलग लीग बनानी है, मैं कुछ करना चाहती हूँ. तो उन्होंने वो इंस्पिरेशन लेकर गाने शुरू किए. जैसे विनेश जी कैबरे सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, वो उन्हीं के दौर में वो गाने फेमस होने शुरू किए थे. वो बताती हैं कि एक टाइम था जो इंडियन रेडियो उस टाइम पे चला करता था, वो कई सॉन्ग्स उनके डिनाई कर देते थे, आने ही नहीं देते थे वो रेडियो पे वो गाने. तो एक और कंपेटिटर था तब सीलोन रेडियो करके, उससे उन वो फेमस होना शुरू हुई उन गानों की बदौलत, क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते थे जो वर्ड्स उस दौरान में फैमिली को नहीं सुनाए जा सकते थे. फिर भी वो डटी रही, उन्होंने इतनी वेरिएशन अपनी वॉइस को दी कि वो हर तरह का गाना गा सकती थी. चाहे आप कोई सैड सॉन्ग ले लो, चाहे आप गजल ले लो, चाहे कव्वाली ले लो, कैबरे सॉन्ग्स जो फेमस ही उनकी वजह से हुए थे. तो वो इतनी रेंज उनकी, उन्होंने 13,000 से ऊपर सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग करी है, जो
1: आई थिंक उसका नाम है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसी का नाम है जी,
0: रिकॉर्ड है कि उनकी रेंज इतनी है. बट उन्होंने क्या बात बोली ना उस इंटरव्यू में, जो मुझे बहुत हम्बल खुद को भी फील कराती है, कि आप चाहे कितने ही बड़े कलाकार हो, आप दूसरे को ट्रीट कैसा कर रहे हैं ना, वो डिसाइड करता है कि आपको प्यार कितना मिलेगा. तो उन्होंने बोला कि मैं जो भी बोलती हूँ, मैं जो भी करती हूँ, ऑडियंस मुझे इतना प्यार देती है सिर्फ इसलिए कि मैं उनको कैसा ट्रीट कर रही हूँ. तो आर्टिस्ट तो है वो, और इतने हम्बल आर्टिस्ट हैं कि उन्होंने अपने अंदर वो एक एरोगेंस आ जाती है ना, जब आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हो, कभी आने नहीं दिया. उन्होंने लोगों को फिर भी वैसा ही ट्रीटमेंट दिया, हम्बली रही वो. और आज भी उनके जाने के बाद विदेश में हर जगह उनकी चर्चा है, कोई भूलता ही नहीं है और भूल सकता ही नहीं है जो वो लेगेसी छोड़ के गई है गानों की. मेरे जैसे सिंगर जो बिल्कुल अनट्रेंड है, रॉ है, हम गाना ही उनका चुनते हैं क्योंकि वो रेंज इतनी है, इतना कुछ हमारे लिए छोड़ कर गई हैं कि हम हार नहीं मानते. हम एज अ फाइटर हम लोग भी लगे रहते हैं कि ठीक है, हर किसी को नहीं मिलता वो मौका कि वो सीख सके, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारो, आप बढ़ते रहो आगे. आप लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हो, बस उस पर ध्यान दो, अच्छे रहोगे सब अच्छा होगा लाइफ में. सो आशा जी

0: थैंक यू, आप इतनी अच्छी लेगेसी हमारे लिए छोड़कर गई हैं एंड वी आर वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड. थैंक यू विनेश जी ये शो ऑर्गेनाइज करने के लिए.
1: थैंक यू अंजलि जो आने के लिए. और अभी जो कुछ गीत भी हमने कुछ निकाला यहाँ पे ना, होप करेंगे कि आप गा सको एंड होप करेंगे कि हमारा जो जो टेक्निकली हम उनको सपोर्ट कर सकें. विल गिव इट अ गो थोड़ी देर में. लेकिन चलो हम बढ़ते हैं अनुराग, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते बहुत ज़्यादा बात करोगे, लेकिन फिर भी जब हम आशा जी की बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर गीत है जो आपको काफ़ी अच्छा लगता है या तो फिर कभी कभी आप उसके गीत गुनगुनाते हो, कोई भी जब डिपेंड्स आप किस जगह पे होते हो, कभी कभी किसी को मनाने के लिए भी गा सकते हो, कभी कभी आप बहुत दुखी हो तो तभी शायद आपको गीत याद आता होगा.
2: विनेश जी देखिए, आशा जी के जो जैसा कि अंजलि जी ने कहा अभी कि उनका जो सिंगिंग जॉनर है इट हैज़ अ वाइड रेंज. इनफैक्ट द स्पेक्ट्रम ऑफ द रेंज एंड द जॉनर इज अक्रॉस द बॉर्डर. उन्होंने किसी भी ऐसा जॉनर में है जहाँ पर सिंगिंग न की हो, और उन उन गीतों में से अगर आप मुझे बोले चुनने के लिए इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि म्यूजिक लवर होने के नाते मैं ऐसा कोई जॉनर नहीं है जिसको मैं अपने लाइफ में थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकूँ. हाँ ये बात अलग है कि मूड जिस तरह का रहे उस हिसाब से कभी कभी उस तरह के गाने अच्छे लगते हैं. जब हम बहुत खुश हों तो मस्ती वाले गाने अच्छे लगते हैं. आशा जी के बेशुमार मस्ती वाले गाने हैं, ड्यूएट गाने किशोर जी के साथ उनके इतने हैं मस्ती वाले कि आप कभी कभी तो उस मूड में नहीं है और वो गाना सुन के तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं. तो उनमें से भी कोई एक गीत चुनना इम्पॉसिबल. अगर आप आज सैड हैं या आप ना किसी तरह से शो में जा रहे हैं तो उस तरह आपको रिलैक्स गाने सुनने का मौका है. गजलों आप पसंद करते हैं, कव्वाली अगर आप पसंद करते हैं स्टेज के मामले में, वहां बैठ के सुनना चाहते हैं, तो उनमें भी आशा जी की इतनी और कुछ कुछ तो अवार्ड विनिंग कव्वालियां और गजलें भी हैं, तो उनमें से भी चुन पाना मुश्किल है. मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है. तो मैं ये अपने ऊपर नहीं ले सकता कि मैं कोई शॉर्ट लिस्ट करूँ गाने को, ना आई एम सॉरी. लेकिन हाँ मैं व्यूअर्स के ऊपर ये डेफिनेटली ये डालूंगा कि आप आशा जी के नाम से जिस जॉनर में भी गाना सुनना चाहते हो आप लिखें, आपको एक नहीं 50 गाने उस जॉनर के मिल जाएंगे और आप सारे गाने एंजॉय करोगे.
1: जी बिल्कुल, बिकॉज कभी कभी वैसा भी होता है कि काफ़ी कुछ इफ यू आर गोइंग बैकवर्ड्स, लाइक अब अगर हम बैकवर्ड्स अगर जाएं, अभी तो सभी कुछ बदल रहा है, लेकिन उस वक्त काफ़ी कुछ मेल डोमिनेटेड होता था. अभी प्रोड्यूसर ले लो, डायरेक्टर ले लो, सॉन्ग राइटर ले लो, अभी जितना भी हम नाम सुनोगे ज़्यादा करके जो म्यूजिक डायरेक्टर्स म्यूजिक राइटर्स सब मेल जो भी डोमिनेटेड होते थे, और जो फीमेल कुछ नाम सामने आते थे. और आशा भोसले जी की अगर बात किया जाए, देन शी सेंग विद मोहम्मद रफ़ी लाइक 900 कुछ सॉन्ग्स, फिर किशोर कुमार के साथ 500 कुछ, एंड देन इस तरह बड़े बड़े कलाकार के साथ में उसके जो जोड़ी बनी, एंड देन दे संग दोज सॉन्ग्स, ताकि और उस सॉन्ग्स के बदौलत आई थिंक चेतना मेंशन दैट कि जो एक्टर्स थे, और एक्टर्स तो थे ही लेकिन मूवीज जो सुपरहिट होती थी. अभी देखो कितने गाने शायद अमिताभ बच्चन के साथ में उसके आ गए, जीना तमान पे आया था, और तो सभी बड़े बड़े एक्ट्रेस उस टाइम के सभी ने जो, और अब आई वाज क्वाइट अ बिट सरप्राइज्ड बिकॉज मुझे नहीं पता था कि शी केप्ट ऑन सिंगिंग इन द लास्ट काइंड ऑफ वो गाना गाते रही है. एंड आई डिडंट रियलाइज कि नए मूवी जो भी थे उसमें भी उसका जो गीत था. तो बिकॉज हम क्या है कि जस्ट बिकॉज वी डोंट सिंग तो हम ये नहीं देखते कि कौन गा रहा है, हम सिर्फ गीत ही रिमेंबर करते हैं. बट ऑफ कोर्स हु आर सिंगर्स देन दे विल एज
2: अर्ली एज अभी हम 2026 में, एज अर्ली एज 2025 में उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ में काम किया. प्राइवेट उनकी ग्रैंड डॉटर का प्राइवेट एल्बम है लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड किया है और वो वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो गूगल पे देख सकते हैं.
1: और एक चीज़ और मैं मेंशन करना करूँगा जो हमें अभी सुन रहे हैं, हालांकि मैं भी मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि शायद जो एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते या ग्रांटेड लेते हैं, अगर आप आशा भोसले अगर उसकी जो फैमिली हिस्ट्री देखोगे देन दे वेर वांटिंग टू स्टडी लेकिन उनको जो मौका नहीं था पढ़ने के लिए. तो अगर आप काफ़ी फैमिली से पूछोगे देन दे वांट टू स्टडी लेकिन उसको मौका नहीं मिलता था, और उनका वो भी समय था कि वो लोग छुप के गए थे ना पढ़ने के लिए. और अभी हमारे पास पढ़ाई का सभी कुछ रिसोर्सेस है लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते. तो वक्त वक्त की बात है, बट डू अप्रिशिएट दोज थिंग्स. हम सभी कुछ बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. तो चलो आई डी नास चेतना, आप बताइए आपका कोई खास गाना जो आप गाते नहीं भी शायद होंगे बट आपके दिमाग में वो धुन बजने लगता होगा शायद जब आप नाराज भी होते होंगे.
3: लाइक अनुराग मेंशन कि आशा जी के इतने रेंज में से एक गाना चूज करवाना वाकई बहुत मुश्किल है, और कभी कभी लाइक ही सर ऐसा ही होता है कि हम वो गाना सुनने लगते हैं और उसी फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं और मूड रिफ्रेश हो जाता है. लेकिन मैं

0: फिर भी थोड़ी सी बायस होके एक गाना बोल ही देती हूँ जो मुझे इस वक्त दिमाग में आ रहा है, वो है सलोना सा सजन है और मैं हूँ. मुझे ये गाना बहुत ही, उनका ये गीत बहुत ज्यादा पसंद है. मैं गाती नहीं हूँ लेकिन मैंने कई बार अनुराग को रिक्वेस्ट किया है मेरे लिए गाने के लिए. इट्स रियली रियली ब्यूटिफुल.
1: जी आप तो अपने ओ नया बोल दिया तो अनुराग को तो गाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तो बीमार तो उसको माफ कर देते हैं फिर हम पकड़ेंगे किसी दिन.
0: पर तो हमारे बहुत सारे इमोशंस उनके गानों के साथ कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि जैसा आप कह रहे थे कि काफी अनकन्वेंशनल चॉइसेस की उन्होंने. लता जी के गाने वर वेरी, दे वर वेरी रोमांटिक, बट दे वर सो मच इन द सेम लीग आई वुड से. फैमिली ओरिएंटेड थे, सबके साथ सुन सकते थे. बट आशा जी के गानों में मुझे मेरे बचपन में भी मतलब एक फन एलिमेंट एकदम से आ जाता था. शायद बहुत सारे ऐसे हम मेरे जैसे बहुत लोग रहे होंगे जो वो मोमेंट्स, वो फन, वो मस्ती, वो सपने हमने उन गानों के थ्रू जिए हैं. शायद हमने खुद अपने आप को नाचते हुए देखा है उन गानों पर और इंजॉय, या फिर व्हेन वी वर इन आवर रोमांटिक एज, यू नो, उस वक्त वो गाने कनेक्ट कर पाना अपने पार्टनर के साथ, विच वॉज मोर फॉर मी. आशा जी के गानों के साथ मैंने वो ज्यादा कनेक्ट किया देन विद एनी अदर सिंगर. और जब ये बहुत ही सैड इंसिडेंस हुआ और हम वी लॉस्ट हर, एक्चुअली मी एंड अनुराग वर डिस्कसिंग कि अब हम एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में हम किसके बारे में बात करेंगे, ये लेगेसी किसको पास ऑन होगी, कौन उनकी जगह ले सकेगा. एंड वी फेल्ट कि शायद इट्स अ गोल्डन एरा गॉन.
1: जी हां, सही सही बात है, बिकॉज़ शी स्टूड देयर फॉर डिकेड्स, काफी जो डिकेड्स में थी. और जब हम अपनी बात करेंगे तो आई मे बी अ फ्यू इयर्स
0: younger than me
1: बोल सकते हो.
0: I get it.
1: तो हमारे जो कलाकार हुआ करते थे कुमार शानू और उदित नारायण, उनके गीत जो हम सुन के, यू नो, बट आई थिंक एक्चुअली जब हम डिफरेंट जनरेशन की बात करें दोनों में भी आशा भोसले उड़े बिन दे काइंड ऑफ. और उस दिन अंजलि एंड अनुराग, यू डिड द ड्यूट.
2: Oh my God, that was such a hit. बिल्कुल, मतलब हम शायद हमने खुद भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा हो जाएगा.
3: और देखिए उस दिन थर्सडे को ही, ये अभी भी श्रोताओं और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जलसा फिजी रेडियो का फेसबुक पेज वापस स्टार्ट हो गया है और ऑलरेडी एक जलसा टैलेंट शो का एक फेसबुक पेज है, तो इन दोनों पेजेस पे वो प्रोग्राम अवेलेबल है. और विनेश जी वो प्रोग्राम को लाते हैं, रजनीता जी एंड विनेश जी, जो टैलेंट शो है उसका ये फिफ्थ सीजन है और ये हमने थर्सडे को थर्ड एपिसोड शूट किया था. मुझे, हमें मौका मिला था आशा जी को इसके थ्रू ट्रिब्यूट देने का, और वो हसीना जुल्फों वाली मैंने इनके अंजलि जी के साथ में वो परफॉर्म किया था. और इस गाने की भी एक अपनी, देखिए क्या होता है जब लेजेंडरी आर्टिस्ट की हम बात करते हैं ना, तो उनके हर एक लेजेंडरी गाने के साथ कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी होती है. तो इस गाने की मैं ये गाना अंजलि जी ने चूज किया था क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप कोई अपना पसंद का गाना चूज करो, हम उसको कोशिश करेंगे निभाने का. तो हमने डिस्पाइट ऑफ बीइंग तबीयत खराब होती है, हमने किया परफॉर्म. इस गाने का भी एक बड़ा अच्छा एक इंसिडेंस जो आर डी बर्मन साहब खुद उन्होंने अपना नरेट किया था एक इंटरव्यू में, कि ये नासिर हुसैन जी ने पहली बार इनके साथ टीम अप किया था ओ हसीना जुल्फों वाली के लिए. और ये इस तरह के जॉनर का शम्मी कपूर जी ने पहली बार आर डी बर्मन जी के साथ में उनके स्टूडियो में देख करके ये वो रिएक्शन दिया था अपना, कि इस तरह का गाना इस जॉनर में पहली बार वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे. और शम्मी कपूर जी उस रिकॉर्डिंग के टाइम पे मौजूद थे और नासिर हुसैन साहब खुद भी मौजूद थे उस रिकॉर्डिंग में. और जब आर डी बर्मन इसको रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वो रिकॉर्डिंग में गाने की तरफ नहीं देख रहे थे, वो शम्मी कपूर जी और नासिर हुसैन जी के रिएक्शन को देख रहे थे, क्योंकि उनका सेंस ऑफ म्यूजिक गाने को रिकॉर्ड कर रहा था. लेकिन उनका रिएक्शन देख कर के जैसे ही गाना खत्म हुआ दोनों ने टेबल बैंक किया और बोला हिट, और इस तरह से गाने का स्टोरी बना. तो ये बात अभी रिसेंटली आर डी बर्मन जी ने, मैंने देखा उनका इंटरव्यू जब उन्होंने, काफी पहले आया था ये इंटरव्यू, बट इसकी एक शोरी है. बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और जैसा कि विनेश जी ने कहा कि दो एपिसोड अभी भी रहते हैं, जून वाले एपिसोड में एक अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे तो जरूर कांटेक्ट करें विनेश जी से. और अंजलि जी प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहें तो
2: इस गाने के जो हमने परफॉर्मेंस दिया था उसकी ये स्टोरी है कि हमने डिसाइड तो कर लिया था गाना कि हम क्या गाने वाले हैं, बट हम दोनों में से किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया था वो गाना साथ में, तो वो जो हुआ उसी दिन हुआ. और होता है ना कि आप कनेक्ट कर जाते हो गानों से, जैसा हम बात ही कर रहे थे आशा जी के गानों के बारे में, कि आप इतने सारे जॉनर्स के गाने उनके, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप कनेक्ट कर जाते हो. और जब दो आर्टिस्ट मिलते हैं तो आई थिंक वो एक जो समा

0: बन जाता है ना जब आप फील करते हो गाने को. और ये रोहित जी ने भी बोली थी कि एक गाना गाना होता है, गाने को महसूस करना होता है. तो आई थिंक हम दोनों ने वो महसूस करके जब वो गाना गाया तो वो वही ऑडियंस को भी पहुंचता
1: पसंद
0: है,
1: आया. यस
0: तो इसलिए ऑडियंस ने इतना पसंद किया उसको, परफॉर्मेंस को.
2: ऑडियंस पर्सपेक्टिव मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा थे और मैं दिस साइड ऑफ द कैमरा थी. इट वॉज